नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और

0: स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियनशिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्रावरून मराठी बातम्या प्रसारित.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू. 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया. सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की. यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई. उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज. और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से. अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है. 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं. सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे. सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है. साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है. यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं. वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है. ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है. यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है. भारत की अध्यक्षता सुदृढ़

0: जागरूकता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटक्यो भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, GDP आंकड़ों पर IMF की मुहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता।

0: के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरें। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: ना रुकना है ना थकना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है. जिंदगी एक सफर है प्यारे, यहाँ हर दिन कुछ नया पाना है. गुड मॉर्निंग मुंबई, सुप्रभात, नमस्कार एंड वेलकम टू योर फेवरेट मॉर्निंग शो मस्त मुंबई, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स. और आज मैं नया रेडियो मित्र साकेत हूँ आपके साथ. आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और आपकी खुशी को दुगना करने के लिए मैं हूं ना. एंड टुडे इज अ सैटरडे वीकेंड डे. लेकिन अभी फिलहाल वीकेंड जाने का सबको इंतजार है और मंडे आने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी का, पूरे भारत का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है. गणेश चतुर्थी आ रही है, बप्पा आ रहे हैं, और हर बार की तरह पूरा भारत हर साल की तरह धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएगा. गणपति के 10 दिन हर एक चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी और हर दिल में एक अलग ही उल्लास होगा. और हाँ, दिल से याद आया, आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारा सेगमेंट होता है दिल का फसाना. आज दिल का फसाना में हम बात करेंगे एक लेजेंड संगीतकार, एक नहीं बल्कि दो लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूओ को हम याद करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दशकों तक इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी करते हैं, कहीं मत जाइएगा. एंड नाउ आई एम प्लेइंग टू बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर यू, जो आपकी वीकेंड की एनर्जी को और बढ़ाएंगे. बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स.

वेलकम बैक टू मस्त मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स एंड शो ऑन है दिल का फसाना एंड दिस इज योर न्यू रेडियो मित्र साकेत विद यू। एक दौर था जब फिल्में सिर्फ म्यूजिक के दम पर सुपर हिट हो जाती थी। फिल्मों की कामयाबी में सिर्फ कहानी या कलाकार का ही नहीं बल्कि संगीत का भी बहुत बड़ा हाथ होता था। और इस दौर की शुरुआत की थी लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूओ शंकर जयकिशन ने। उस दौर में 50, 60, 70 के दशक में जो जो गाने इन्होंने कंपोज किए सभी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स हुए और आज भी हैं। और आज 12 सितंबर को जयकिशन जी की पुण्यतिथि है। इनका पूरा नाम है जयकिशन दयाभाई पांचाल। गुजरात के बंसाड़ा जिले में जयकिशन जी का जन्म हुआ और संगीत में इनको रुचि अपने बड़े भाई बलवंत से मिली, क्योंकि इनके बड़े भाई गाँव की एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाते थे और धीरे धीरे जयकिशन जी का भी हारमोनियम से रिश्ता जुड़ गया और वो भी बहुत ही शानदार हारमोनियम वादक बने। और उनकी शुरुआती शिक्षा जयकिशन जी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद पंडित वाड़ीलाल जी से हुई। इसके बाद इन्होंने प्रेम शंकर नायक से भी संगीत की तालीम ली, लेकिन सपने बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने मुंबई का रुख किया। और शायद उस वक्त जयकिशन जी को भी पता नहीं था कि मुंबई में उनकी मुलाकात शंकर सिंह रघुवंशी नाम के एक ऐसे शख्स से होने वाली है जिसके साथ मिलकर वो हिंदी फिल्म संगीत की एक ऐसी कहानी लिखेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। तो कैसे इन दोनों का साथ हुआ, कैसे इन दोनों की जोड़ी बनी, सब बताएंगे आपको। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने मैसेज हमारे नंबर 8657661 पे भेजते रहिए जो आपके लिए हमेशा ऑन है। और अब आपके लिए इन दोनों महान जोड़ी के दो बैक टू बैक से ऑसम सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ। इंजॉय करिए, स्टे ट्यून ऑन FM रेनबो।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: FM रेनबो को रंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
4: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और आज दिल का फसाना में हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर डुओ शंकर जयकिशन जी की। और आज जयकिशन जी की पुण्यतिथि है। अपनी किस्मत आजमाने जयकिशन जी मुंबई आए थे, या यूं कहें कि मुंबई ने उन्हें अपने पास इसलिए बुलाया था क्योंकि उनसे कुछ बड़ा करवाना था। तो आखिर शंकर जयकिशन की जोड़ी बनी कैसे? कहा जाता है कि एक दिन जयकिशन जी उस समय के फेमस फिल्म डायरेक्टर चंद्रवदन भट्ट के ऑफिस में काम की तलाश में गए थे।

क्योंकि चंद्रवदन भट्ट भी गुजराती थे, तो वहां इनकी मुलाकात शंकर जी से हुई थी। शंकर जी थे हैदराबाद से और दोनों ही संगीत से जुड़े थे, तो दोस्ती होने में वक्त नहीं लगा। शंकर जी ने बताया, मैं पृथ्वी थिएटर में तबला बजाता हूं। और जयकिशन जी ने कहा, भाई वाह, मैं हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता हूं। फिर कुछ समय बाद पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम वादक की जरूरत हुई और जयकिशन जी वहां हारमोनियम वादक के तौर पर जुड़ गए। अब जरा किस्मत का खेल देखिए जनाब, पृथ्वी थिएटर में राज कपूर साहब भी अपने नाटक किया करते थे और उस समय राज कपूर साहब के म्यूजिक डायरेक्टर होते थे राम गांगुली और शंकर जयकिशन भी उनके साथ काम करते थे। फिर जब राज कपूर साहब ने अपने बैनर आर के फिल्म्स के तहत पहली फिल्म बनाई आग, फिल्म का संगीत अच्छा था लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद राज कपूर साहब अपनी अगली फिल्म बना रहे थे बरसात। शुरुआत में इसके म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली ही थे लेकिन बाद में इन दोनों की जमीन ही कुछ डिफरेंसेस हो गए, कुछ मतभेद हो गए और अब राज कपूर साहब के सामने एक बड़ा सवाल था कि फिल्म तो स्टार्ट हो गई है, फिल्म का संगीत कौन देगा। और यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास ही बदल दिया। राज कपूर साहब ने शंकर जी से पूछा कि शंकर भाई, संगीत दोगे? शंकर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोशिश करूंगा। और शंकर जी ने एक बात और कही, राज साहब वो लड़का है ना जो हारमोनियम बजाता है जयकिशन, उसे भी साथ ले लूं क्या? राज साहब ने कहा, ठीक है देख लो। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बरसात के गाने जब लोगों तक पहुंचे ना तो सारे गाने सुपर डुपर हिट, सारे गाने। और इसी फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा को मिली एक ऐसी म्यूजिकल पार्टनरशिप जिसने आने वाले दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया, शंकर जयकिशन। और कुछ लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनके शुभ नाम मैं लेना चाहूंगा। अंजू जी है अंधेरी ईस्ट से, प्रमोद जी है, राजेंद्र जी हैं गोरेगांव से, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661070 पर हमें मैसेज करिए। और अब शंकर जयकिशन के दो प्यारे प्यारे गाने मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

इलेक्शन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: नारंगी बनाएंगे।
1: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
2: म्यूजिकली योर्स।
3: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और आज जयकिशन जी की पुण्यतिथि है। बरसात से शुरू हुआ शंकर जयकिशन का सफर, और इसके बाद तो इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत में जैसे एक नया अध्याय ही लिख दिया। बरसात फिल्म से हिंदी सिनेमा में टाइटल सॉन्ग्स का दौर शुरू हुआ, और इसका श्रेय शंकर जयकिशन को जाता है, क्योंकि बरसात का जो टाइटल सॉन्ग है, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, ये पहला हिंदी सिनेमा का टाइटल सॉन्ग माना जाता है। इसके बाद जब राज कपूर साहब की आवारा में इन्होंने म्यूजिक दिया, उसके बाद तो इंटरनेशनल लेवल पर शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब और सबसे बड़ी बात, भारत का नाम रोशन हुआ। क्योंकि आवारा फिल्म का टाइटल सॉन्ग आवारा हूं एक मैसिव ग्लोबल एंथम बना। रशिया, चाइना, जर्मनी, यूरोप और भी बहुत सारी कंट्रीज में इस गाने को बेहद पसंद किया गया, और फिर तो जैसे हर तरफ एक ही नाम सुनाई देने लगा, शंकर जयकिशन, शंकर जयकिशन। इसके बाद तो श्री 420, चोरी चोरी, जंगली, अनाड़ी, संगम, ब्रह्मचारी, सूरज और भी लगभग जिन भी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया ना, सभी सुपरहिट हुआ, सभी सुपरहिट। आलम ऐसा था कि फिल्मों की किस्मत हीरो से नहीं बल्कि शंकर जयकिशन से लिखी जाती थी। और इतना ही नहीं, फिल्म्स के प्रमोशंस में इनके बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर लगाए जाते थे। सोचिए, ये पॉपुलरिटी थी इन दोनों की। और इन दोनों पर्सनैलिटीज की अगर हम नेचर की बात करें तो वो बिल्कुल अलग। शंकर जी एकदम डिसिप्लिन, कड़क, सीरियस, फोकस्ड एंड गुस्से वाले भी, और वहीं जयकिशन जी एकदम मस्त, रोमानी, रोमांटिक और बहुत ही हैंडसम थे जयकिशन जी। लेकिन संगीत के मामलों में दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं थी, और कौन सा गाना शंकर जी ने बनाया और कौन सा गाना जयकिशन जी ने, यह भी बताना मुश्किल था। क्योंकि जयकिशन जी अगर कोई गाना बनाते तो वो शंकर जी को सुना देते, और अगर शंकर जी कोई गाना बनाते तो वो जयकिशन जी को सुना देते। और यही इन दोनों का प्यार था कि गाना कोई भी बनाए, नाम दोनों का ही आएगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप को एक ही म्यूजिकल आइडेंटिटी मानते थे। और अगर इस रिश्ते को एक लाइन में कहे ना, शंकर जी अगर आसमान थे तो जयकिशन जी उस आसमान का चांद। तो चलिए, इस महान जोड़ी के दो बैक टू बैक और गीत हम सुनते हैं। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून ऑन एफएम रेनबो। और हाँ, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। विजेंद्र जी हैं, प्रणव शिंदे जी है, दीपा पालकर जी है, शुभ लक्ष्मी जी है, बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। आपका प्यार ही तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। स्टे ट्यून ऑन एफएम रेनबो 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

इलेक्शन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स एंड मस्त मुंबई में शो ऑन है दिल का फसाना और दिल का फसाना में बात हो रही है लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर डुओ शंकर जयकिशन की। शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस थे। एक तरफ ऐसे गाने जो प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से बेस्ड थे ये भी इन्होंने बनाए, तो दूसरी तरफ ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा वाले गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स, इमोशनल मेलोडीज और हिंदी सिनेमा में ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा और बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी शंकर जयकिशन जी को ही जाता है। इनके संगीत की यही खासियत थी कि हर फिल्म में कुछ नया, हर सिचुएशन के लिए एक अलग साउंड, और इनके काम करने का अंदाज भी बड़ा कमाल था। इन दोनों की सोच थी कि हम काम लेंगे ना तो मालिक बनकर काम लेंगे, कि हम इतने पैसे लेंगे और इस वक्त आपका काम करेंगे, और जब काम करते थे तो नौकर बन के काम करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जिस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हमें अपनी फिल्म में लिया है अगर उसने हमसे नहीं कमाया ना तो वो अगली बार हमें अपनी फिल्म में क्यों लेगा। और यही प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन था, और इसी की वजह से एक दौर में शंकर जयकिशन की फीस फिल्म के हीरो से भी ज्यादा होती थी। फिल्म के हीरो तो हजारों में फीस लेते थे लेकिन शंकर जयकिशन की फीस होती थी 1,00,000। और कहा यह भी जाता है 1965 में राजेंद्र कुमार स्टारर फिल्म आरजू, इस फिल्म के लिए इन्होंने 10,00,000 रुपए फीस ली थी, ऐसा कहा जाता है। सोचिए उस दौर में ये पॉपुलरिटी थी इनकी। तो चलिए इस म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इन लेजेंड्स के दो बैक टू बैक सॉन्ग, शानदार गीत। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून ऑन एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM एंड दिस इज योर न्यू रेडियो मित्र साकेत विद यू।

इलेक्शन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक टू मस्त मुंबई ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। शंकर जयकिशन ने अपने सफर में लगभग 136 फिल्मों में संगीत दिया, 136। और अचीवमेंट्स की हम बात करें तो इस महान जोड़ी ने 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अपने नाम किया। और शंकर जयकिशन का बिना का गीतमाला का एक बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है। इनके गाने 1953 से 1971 तक लगातार टॉप 3 पोजीशंस में बने रहे, क्या बात है। और भारत सरकार ने 1968 में शंकर जयकिशन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इनकी लेगेसी को सम्मान देने के लिए इंडियन पोस्ट ने 3 मई 2013 को शंकर जयकिशन के नाम से डाक टिकट भी जारी किया था। और मुंबई में चर्च गेट के पास, बिल्कुल पास यहां से, इरोस सिनेमा के नजदीक शंकर जयकिशन चौक भी है जो इनके नाम को हमेशा जिंदा रखता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक मोड़ ऐसा आता है जब साथ चलने वाले दो कदमों में से एक कदम रुक जाता है। आज ही के दिन 12 सितंबर 1971 को सिर्फ 41 साल की उम्र में जयकिशन जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जयकिशन जी के जाने के बाद भी शंकर जी ने अपने काम में शंकर जयकिशन का नाम कायम रखा, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का नाम नहीं था, एक सोच थी, एक पहचान थी, एक संगीत था। शंकर जयकिशन, दो नाम लेकिन एक आत्मा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा कलाकार मरता नहीं है, वो अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आज के दिल के फसाने में बस इतना ही। और अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का ये बहुत ही प्यारा गाना, आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अतोनिया गुतरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुंबई में 7वें ग्लोबल फिटनेक फेस्ट का कल समापन हो गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल सम्मेलन को संबोधित किया। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जूनियर एशिया महिला हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से शिकस्त दी। भारत पूल ए में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर है। समाचार यहीं समाप्त हुए। अब से थोड़े क्षण में हम जुड़ेंगे वापस FM रेनबो के दूसरे सेगमेंट नमस्ते भारत से।
1: की काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक टू एफ एम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफ एम म्यूजिकली योर्स एंड दिस इज योर न्यू रेडियो मित्र साकेत विथ यू। तो चलिए आगाज करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का नमस्ते भारत का। और नमस्ते भारत में आज हम सुनेंगे सुनो सुनो ए दुनिया वालों। दोस्तों आज सब कुछ है हमारे हाथों में। ज़रा सोचिए जब से ये मोबाइल नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में आई है ना, डे बाय डे हमारी लाइफ आसानी होती जा रही है। आज हमारी उंगली के एक टच के सामने दुनिया आ जाती है। और सोशल मीडिया के बाद तो जनाब क्या ही कहना, अब तो ये आलम हो गया है कि हर वक्त कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे दस्तक देता ही रहता है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा इंसान भी चंद सेकंडों में हमसे बात कर सकता है। लेकिन लेकिन इसी के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या सोशल मीडिया ने सच में हमें कनेक्ट किया है या फिर कहीं ना कहीं हम लोनली होते जा रहे हैं, हमें लोनली बना दिया है। बात है और बात तो बात करने की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन ऑनलाइन रहते हैं, लोगों की स्टोरीज देखते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल्स करते रहते हैं, पोस्ट लाइक करते रहते हैं, लेकिन फिर जब फोन साइड में रखते हैं ना तो आसपास एक खामोशी सी छा जाती है। बात तो सोचने की है कि हमारे पास बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनसे हम बिना फिल्टर के खुल के बात कर सकते हैं, जिनके सामने खुल के हंस सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिना किसी डर के बात कर सकते हैं। और सोशल मीडिया को दोष देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसी सोशल मीडिया की वजह से दूर बैठे परिवार एक दूसरे से जुड़े हैं, पुराने दोस्त मिले हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के लिए दरवाजे तो खोले हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को एक हिस्सा बनके सही में बदला है, या फिर हमारी पूरी ही ज़िंदगी सोशल मीडिया बनती जा रही है? बात तो करते करते बड़ी सीरियस हो गई ना, कोई नहीं अभी कूल करता हूँ। दो बैक टू बैक से ऑसम से गाने आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाज़ में। ये गाना सुनिए फ्रॉम द मूवी शुद्ध देसी रोमांस।

life. टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

0: यही तो है FM रेनबो का राज।
1: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
2: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Welcome back to FM Rainbow, only on 107.1 FM, musically yours, and show on है नमस्ते भारत। और नमस्ते भारत में आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो सुनो सुनो ए दुनिया वालों, में ब्रेक से पहले हमने बात की कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग होने के बावजूद भी कभी कभी लोनलीनेस फील हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया को सिर्फ विलन बना देना ही सही नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टली आज तो इसके बिना काम चलना बेहद मुश्किल है। क्योंकि पहले अगर कोई अपना हजारों किलोमीटर दूर रहता था, किसी दूसरे शहर या किसी विदेश में रहता था, तो उससे बात करने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी तो महीनों निकल जाते थे अपने किसी की शक्ल देखे हुए। और आज वीडियो कॉल पर हम तुरंत बात कर सकते हैं। पुराने स्कूल के कॉलेजेस दोस्तों से, जिनसे सालों से मुलाकात नहीं हुई होती थी, सोशल मीडिया से हम फिर कनेक्ट हो गए। किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, कोई अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, सब है। सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे दरवाजे खोले हैं। तो सोशल मीडिया सिर्फ लाइक और कमेंट्स फॉलोअर्स के लिए ही नहीं है, ये कनेक्शन का भी माध्यम है। लेकिन कनेक्शन और रियल कनेक्शन में फर्क होता है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है कि सोशल मीडिया पर आपका जो अपना है, आपका जो दोस्त है, जो इमेज आपके सामने शो कर रहा है, उसकी रियलिटी बहुत अलग होती है, हो सकती है। और ये हम सब पे लागू होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम अपनी जिंदगी का वही हिस्सा दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। आज के ज़माने में किसी की पोस्ट पर हार्ट भेज देने से ज़्यादा बड़ा है मुश्किल वक्त में उसके साथ बैठना। क्या पता उसको आपकी नीड हो। इसी फर्क को हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल नीरज श्रीधर की आवाज आपके पास आ रही है कॉकटेल मूवी से। ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूं। स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
0: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
5: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries

0: as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Chalna, ghoom ke aate hain. Chalna yaar, milte hain. Ye chote chote shabd hai na. हमारी जिंदगी से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मिलना जुलना कम होता जा रहा है जनाब। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम, शो ऑन है नमस्ते भारत में। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, मिलना जुलना कम होता जा रहा है। हफ्ते में 5-6 दिन तो हम काम में बिजी रहते हैं और संडे आता है तो लगता है कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, है ना? लगता है ना? मुझे भी लगता है। लेकिन उसी आराम में हम हमारा काफ़ी समय सोशल मीडिया पर टक टक टक टक बिता देते हैं, OTT देखने में बिता देते हैं, यानी ज़्यादातर हम टाइम ऑन स्क्रीन ही रहते हैं। और शायद यहीं पर हमें थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है? जो आपके अपने हैं, जिनके सामने आप बिना किसी फिल्टर के बात कर सकते हैं, कोई फिल्टर की, कोई पर्दे की ज़रूरत नहीं होती, उनसे मिलिए, उनके साथ बैठ के बात करिए, सुख दुख की बातें करिए, पूछिए सब ठीक है ना, खुश हो जिंदगी में, उनके साथ घूमने जाइए। और मेरा मानना है घूमने का मतलब सिर्फ कैफे या मॉल जाना नहीं, कभी शहर से बाहर निकलकर नेचर के पास जाइए। आसपास कोई ट्रैकिंग एरिया हो, कोई तालाब हो, नदी हो, पहाड़ हो, हरियाली हो, वहाँ जाइए। क्योंकि जब आप नेचर के करीब होंगे ना तो अंदर से एक अलग ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और ऑब्जर्व करिएगा, जब आप नदी के किनारे बैठते हैं, पहाड़ों के पास होते हैं, पेड़ों के बीच होते हैं, तो सिर्फ आपका मूड ही नहीं बदलता, आपकी बातें भी बदल जाती है, आपकी आवाज़ की टोन बदल जाती है, बातचीत में एक ठहराव आ जाता है। क्योंकि इसलिए वहाँ कोई नोटिफिकेशन आपको परेशान करने के लिए नहीं होता, कोई स्क्रीन आपका टेंशन नहीं मांग रही होती, बस आप होते हैं और आपके साथ होते हैं आपके अपने और साथ में नेचर की खूबसूरती। इसलिए सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, इसलिए कभी कभी फ़ोन को साइड में रखिए और अपने लोगों के पास बैठना शुरू करिए। और अब आपके लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी कोई मिल गया से ये गाना आ रहा है। दिस इज़ योर रेडियो मित्र साकेत विथ यू, स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM।

0: सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो
1: म्यूजिकली योर्स।
2: टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।

एंड नमस्ते भारत आप सुन रहे हैं। एंड नमस्ते भारत में आज का सेगमेंट है सुनो सुनो ओ दुनिया वालों। हम सभी ने नोटिस किया है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, मोबाइल पर। और रात को सोने से पहले आखिरी चीज हम क्या देखते हैं, मोबाइल। और हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी हो गई है कि फ़ोन के बिना आज के ज़माने में कुछ घंटे रहना तो बेहद मुश्किल है। लेकिन कभी कभी इस डिजिटल दुनिया से भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ना, इसी को कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ये वर्ड अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है, यानी फ़ोन से दूरी बना लेना। मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए दूरी बना लेना, नहीं, बस दिन में कुछ वक्त ऐसा रखिए जहां आपके नोटिफिकेशंस ऑफ हो, स्क्रीन से दूर हो और आपका ध्यान अपने आसपास की रियल दुनिया पर हो। उस समय आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, फैमिली से बात करिए, वॉक पर जाइए, चुपचाप अपनी चाय कॉफी एंजॉय करिए, किताबें पढ़िए, बिना उस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर किए हुए। क्योंकि लाइफ सिर्फ ऑनलाइन अपडेट्स में नहीं, अनफिल्टर्ड मोमेंट्स में भी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो आज से एक छोटा सा चैलेंज लीजिए, हर दिन कुछ वक्त आपको ऐसा निकालना है जब आपको फोन से थोड़ी सी दूरी बनानी है और खुद से रिकनेक्ट होना है। और रिकनेक्ट से अगर हम री हटाएं तो बनता है कनेक्शंस। और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम जिनके शुभ नाम मैं लेना चाहूँगा, पंकज मोहिड़े जी हैं, प्रणव शिंदे जी हैं, बाबा हैं दादर से, कल्पना राजू जी हैं उल्लास नगर से, कंचन जी है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे से जुड़ते रहते हैं। और अब आपके लिए कुमार सानू की आवाज़ आएगी फ्रॉम द मूवी परदेस, और साथ में होंगी अलका याग्निक। स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे थे नमस्ते भारत ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स एंड दिस इज योर न्यू रेडियो मित्र साकेत विथ यू। तो दोस्तों आज सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों में हमने बात की सोशल मीडिया की, और शायद इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया कनेक्शन है या लोनलीनेस है, क्योंकि ये दोनों हो सकता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया से दूर बैठे अपने लोगों के करीब रहिए, अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, नई चीज़ें सीखिए और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाइए। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिए कि रियल लाइफ में भी कुछ लोग हैं जिन्हें आपके एक मैसेज से ज़्यादा एक कॉल की ज़रूरत हो। बस कभी कभी उनसे इतना पूछ लेना ही बहुत होता है, कैसे हो, ठीक हो ना, चलो मिलते हैं। और दोस्तों अब जब बात अपनेपन की हो ही रही है तो मुंबई में और पूरे भारत में बप्पा के आगमन की तैयारी जोरों पर है। तो इन एडवांस एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके घर खुशियां लेकर आए, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और अब अपने रेडियो मित्र साकेत को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। सुनते रहिए एफएम रेनबो 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। और अब अरिजीत की आवाज आपके पास आ रही है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 11:24 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र नगराले। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। श्रम और रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार ने के सहयोग से मुंबई में कल भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने

कहा कि श्रम शक्ति किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न हिस्सा है और राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने प्रसाद से बिजली पर पहल शुरू की है। इसके तहत गणेश उत्सव के दौरान लालबाग सा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल से उत्पन्न करीब 80 मैट्रिक टन गीले कचरे से अक्षय बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बिजली का इस्तेमाल अस्पतालों के वार्ड, गलियारों और अन्य क्षेत्रों में रोशनी के लिए किया जाएगा। समाचार में आगे, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के खारघर में समर्पित कला जिला आर्ट डिस्ट्रिक्ट विकसित करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रस्तावित कला जिले में आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक संस्थान, कलाकारों के स्टूडियो और आवास, कला भंडारण सुविधाएं तथा कला शिक्षा के लिए स्थान विकसित किए जाएंगे। और समाचार के अंत में खेल समाचार। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष एकल के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरवे से होगा। अलेक्जेंडर जेरवे ने पहले सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी कैरेन खाचानो को हराया और एक अन्य सेमीफाइनल में बेन शेल्ट ने अमेरिका के ही फ्रांसीसी टियाफा को पराजित किया। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मधुर नगमे के साथ।

जोगी और गंगा, ये इश्क रे क्या बात है। गंगा के किनारे बैठे जोगी जिस तरीके से गंगा से जुड़ जाते हैं, उसी तरीके से मेरा इश्क भी कुछ ऐसा है। अरिजीत सिंह की आवाज़ थी और हमारा इश्क भी कुछ ऐसा है। 11:16 का समय। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आदाब किंग छो सत श्री अकाल आणि मुंबई कसकाय झकासना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त हो और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। सैटरडे का दिन है, वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों को छुट्टी जरूर होगी आज भी, लेकिन हाँ वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये नॉर्मल वीकेंड नहीं है। शनिवार रविवार के साथ साथ सोमवार को भी छुट्टी रहेगी। सोमवार को तो सभी लोगों को छुट्टी रहेगी, रविवार और सोमवार दो दिन बिल्कुल आपके पक्के वाले दिन है जहां आप जो है वो रिलैक्स हो सकते हैं, अपने परिवारजनों के साथ समय बिता सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार को आगमन होने वाला है गणेश जी का। इसी खुशी के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत ऑलरेडी एफएम रेनबो के साथ आपकी हो चुकी है, इसे और खुशनुमा बनाते हैं एफएम रेनबो के साथ। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 11:17। आप सुन रहे हैं स्टेशन ऑफ नेशन एफएम रेनबो, कार्यक्रम है ब्रेक फ्री और बड़े दिनों बाद आपसे मिलने आया हूँ। मेरी आवाज आप पहचानते हैं ही, मैं हूँ आरजे शैलेंद्र। चलिए ब्रेक फ्री को आगे बढ़ाते हैं कुछ नए पुराने नगमों के साथ, और ये क्लासिक सॉन्ग आप सभी के लिए एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

सॉन्ग गेस किया कि नहीं आपने, विजय और कोरस मिलकर इसे गा रहे हैं, अनजान के लिखे बोल, बपी लहरी की आवाज और फिल्म है डिस्को डांसर।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। आजकल ये दोपहर का जो समय होता है ना, दोपहर में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि कहीं धूप का मौसम तो शुरू नहीं है। और इस थोड़ी धूप जो है वो आजकल दोपहर में चिलचिलाती रहती है और फिर अचानक जो है वो मौसम

बदलता है, मौसम बदलता है, बारिश का माहौल बनता है और कुछ बूंदे जो है वो बरसती है। ऐसा ही कुछ जो है वो धूप छाव का और थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी धूप का जो है वो सिलसिला जारी रहता है। यही तो मजा है दरअसल बरसात की, मौसम का मजा इसी को कहते हैं। जिस तरीके से मौसम पल दो पल में बदलते रहता है, ठीक उसी तरह हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। जिंदगी में होने वाली चीजें और घटनाएं भी बदलती रहती है, लेकिन कुछ कलाकृतियां ऐसी होती है जो काल से भी परे होती है। उनकी प्रासंगिकता और प्रसिद्धि जो है वो आज भी वैसी होती है। ऐसी ही एक साहित्य कलाकृति है पाथेर पांचाली, जिसे लिखा था विभूति भूषण बंडोपाध्याय ने। दरअसल आज उनका जन्मदिन है। पाथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंडोपाध्याय आज जो है उनके जन्म दिवस पर उनके कुछ कलाकृतियों को और उनके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले जो है वो कुछ प्यारे से नगमे आपके लिए लेकर आया हूँ। उनके कलाकृतियों के साथ साथ उनके जिंदगी से जुड़ी बातें भी रहेगी और आपके संदेश जो मुझ तक पहुँचे हैं, आप में से कई लोगों ने जो मुझ तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है, अपने शब्द पहुँचाए हैं, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। शुभ लक्ष्मी मास्तिकर है, राकेश माथुर जो है पूना से है, प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से कार्यक्रम में बने हुए हैं, वीरेंद्र घाटोल अकोला से मेरे साथ कार्यक्रम में है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कई लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है और बड़े दिनों बाद मेरी मुलाकात, मुझे भी आपसे कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर कार्यक्रम में कुछ खूबसूरत सा संगीत और आगे विभूति भूषण बंडोपाध्याय के बारे में भी, उनके कुछ लेखन के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ म्यूजिक कैफे भी आपका इंतजार कर रहा है। स्टे ट्यून एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, दोपहर के 12:25 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री आज दिन भर कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला जारी रखेंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आबूधाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल निहान और वियतनाम के प्रधानमंत्री लिम मिंग हंग सहित अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद महीने में कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। समाचार में आगे, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सोमवार से शुरू होने वाले इस त्योहार के दौरान यात्रा को आसान बनाने के लिए कोकण रेलवे, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे मार्ग पर स्पेशल

ने चलाई जा रही है। और समाचार के अंत में खेल समाचार। महिला एशिया कप क्रिकेट दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है। ये थी इस घंटे की सुर्खियां एफएम रेनबो पर। अगला कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे, और म्यूजिक कैफे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

रहना तू पल पल दिल के पास। अरिजीत सिंह और परंपरा ठाकुर की आवाज, सिद्धार्थ गरिमा और सचेत परंपरा ने इसे कंपोज किया था। 12:06 का समय, नए कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत हुई।

चुकी है और म्यूजिक कैफे में आज सभी के लिए बहुत ही आपको दिल को छू लेने वाला म्यूजिक जो है वो लेकर आया हूँ और कई लोगों के जो है वो अरमानों का संगीत या फिर कई लोगों के जमाने का संगीत भी आज म्यूजिक कैफे में जो है वो प्ले होने वाला है। म्यूजिक कैफे में जो है वो पसंदीदा गीत तो रहते ही है। आप अगर अपने कैफे में है तो आप क्या प्ले कर सकते हैं, वो संगीत तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो है वो थोड़ी देर पहले जो मैंने विभूति भूषण बंडोपाध्याय जी की बात की है उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने कई जो है वो पांचाली के अलावा जो है वो उनकी कई कलाकृतियां जो है वो अमर हुई है, जिसमें अपराजितो है, चंदेर पहाड़ है या अरण्यक नाम का जो उपन्यास उन्होंने लिखा है वो भी बहुत चर्चित रहा। इनका जन्म 12 दिसंबर 1984 को उनके मामा के घर हुआ था और उनके असाधारण साहित्य पर का दो से लेकर और कई फिल्में भी बनी हैं, जिसमें द लीजेंडरी सत्यजीत रे साहब ने उनके उपन्यास पर जो है वो पाथार पांचेली फिल्म भी बनाई, साथ ही साथ द वर्ल्ड ऑफ अपू जिसे अपूर संसार के नाम से रिलीज किया गया था। साहित्य के साथ साथ जो है वो फिल्में भी उनके नाम है और एक ऐसे लेखक गीतकार और उपन्यासकार को आकाशवाणी परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। म्यूजिक कैफे में जो है वो आपके लिए क्या सरप्राइज है जल्द ही बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ प्यारे से नगमे आप सभी के लिए। मेरे साथ म्यूजिक कैफे में बने रहिए, आपके संदेश भी जो है वो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। स्टे ट्यून एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका 107.1 की फ्रिक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और कार्यक्रम में आप सभी के साथ मैं भी शामिल हूँ म्यूजिक कैफे में। और म्यूजिक कैफे में आज बात होगी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े एक दिग्गज की, जिनके गीतों ने लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने 22 साल तक लगातार हिंदी फिल्म जगत में अपनी संगीत का जादू बिखेरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संगीत निर्देशक जोड़ी शंकर जयकिशन से, जयकिशन पांचाल जी की। म्यूजिक कैफे में आज उनके गीतों का आनंद लेते हैं और साथ ही उनके जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू भी जानते हैं। एफएम रेनबो पर म्यूजिक कैफे यानी म्यूजिकल जर्नी आरजे शैलेंद्र के साथ।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आरजी शैलेंद्र के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे, और म्यूजिक कैफे में संगीत निर्देशक जय किशन जी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। उनकी बातों को जारी रखने से पहले आपके संदेशों के बारे में भी जो है वो आपसे बात करना चाहूँगा। कार्यक्रम शुरू होते ही आपके संदेश जो है वो मुझ तक पहुँचे हैं। कई सारे पुराने लिसनर्स के साथ भी जो है वो बड़े दिनों के बाद फिर से बात हो रही है। पुराने लिसनर्स में अगर बात करूं तो राजेंद्र परमार जी है, उन्होंने बड़े दिनों बाद संदेश भेजा है और गुफ्तगू भी हुई है उनके साथ। अंजू मैडम है अंधेरी, इससे उनका संदेश आया है। अशोक पाटिल वर्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और पंकज मोहाड़ अमरावती से उन्होंने हम तक संदेश भेजा है। साथ ही साथ बाबा जो है वो दादर से हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक जो है वो उत्साहपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में अपना जो है वो सहभाग देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत

बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम का मजा दुगना हो जाता है आपके साथ बात करने के बाद। और अब जो है वो संगीत निर्देशक जयकिशन जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज दरअसल उनकी डेथ एनिवर्सरी है और उनका संगीत का सफ़र बहुत बड़ा है जिसमें दो तीन पीढ़ियाँ शामिल है। जयकिशन जी छोटी सी उम्र से ही हारमोनियम बजाने में निपुण थे। बड़े होने पर संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने संगीत विशारद वाडीलाल जी और बाद में प्रेम शंकर नायक से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में जयकिशन जो है वो रोजगार की तलाश में मुंबई चले आए। मुंबई जाकर उनका सपना था कि वे संगीत की दुनिया में काम करें और नाम कमाएं। और इसकी शुरुआत मुंबई जाने के बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई जानते हैं इस बारे में, लेकिन पहले उन्होंने इतने सारे संगीत का निर्माण किया है, संगीत निर्देशन किया है, तो उन्हीं के द्वारा संगीत बद्ध किया हुआ ये अगला गीत। और हाँ, अगर आप भी उनके द्वारा संगीत निर्देशित किया गया कोई गीत सुनना चाहते हैं तो अपना संदेश मुझ तक जरूर भेजिएगा। FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिक कैफे में संगीत की महफिल और शंकर जयकिशन जी की जोड़ी में से जयकिशन जी का आज बातें चल रही है। उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।

0: dil.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: म्यूजिक कैफे में मैं आरजे शैलेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ आपके कुछ संदेश और आपके कुछ बातें और साथ ही जय किशन जी के जिंदगी से जुड़े कुछ पल और उनकी जो है वो जिंदगी के कुछ लम्हे. जब उनके जोड़ीदार शंकर जी को पता चला कि जय किशन भी काम की तलाश में है तो उन्होंने फिल्म निर्देशक पृथ्वीराज कपूर से बिना कुछ पूछे ही उनको जो है वो पृथ्वी थिएटर में काम करने का प्रस्ताव दिया. हालांकि पृथ्वीराज कपूर ने शंकर के प्रस्ताव का सम्मान करते हुए खुशी खुशी जो है वो जय किशन साहब को काम पर रख लिया और आगे उनकी मुलाकात जो है वो पृथ्वीराज कपूर के साथ तो थी ही लेकिन आगे उनकी

मुलाकात लेजेंडरी राज कपूर के साथ भी हुई। ये कहानी या फिर ये जो तिकड़ी है, शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब, इन्होंने आगे संगीत की दुनिया में कई बहुमूल्य संगीत की कलाकृतियां दी, उसके बारे में बात होगी ही। लेकिन पहले आपके कुछ संदेश भी जो है आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फिर एक बार जो है वो मुझ तक अपनी बातें पहुंचाई है। ये दत्तात्रेय अड़ात है वेलापुर से, राम प्रजापति जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। अजय साखरे, इन्होंने जो है वो इंदौर से संदेश भेजा है। राकेश माथुर जी कह रहे हैं कि बड़े दिनों बाद आप की आवाज़ सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सो मच राकेश जी। और भी कई लोगों के संदेश है, प्रणव शिंदे ने भी संदेश भेजा है, और संदीप कुमार, इनका भी संदेश आया है। संदेशों के साथ साथ सभी अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी फरमाइश जो है वो हिट हॉट में ज़रूर पूरी होगी, और म्यूज़िक कैफ़े के इसी अंदाज को या फिर जय किशन जी के गीतों से भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। फिरोज़ भाई का हमारे रेगुलर लिसनर है, और उनका भी संदेश आया है, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और भी कई संदेश है, उनके बारे में भी जिक्र करूंगा। फिलहाल कहानी को या फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय किशन जी की बात हो रही है, तो उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ, उन्हीं के द्वारा रचित कुछ गीत आपके लिए लेकर आया हूं। बने रहिए मेरे साथ, जल्द ही लौट कर आऊंगा आपके संदेशों के साथ और कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। एफएम रेनबो म्यूजिकल जर्नी विथ आरजे शैलेंद्र, म्यूजिकली योर्स।

ठीक 1 बजे आप सुनेंगे मराठी समाचार और 1:05 पे फिर मैं आपसे जुड़ूंगा कार्यक्रम हिट हॉट में। सुनते रहिए FM रेनबो।

श्री 420 का ये गीत और हिट हॉट कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। हिट हॉट कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं आया हूँ आपके लिए आपकी पसंदीदा गीत और आपकी फरमाइश के गीत लेकर। दोस्तों, घड़ी की तरफ देखता हूँ तो लगता है वक्त की बड़ी कमी रहती है, आपकी फरमाइशें इतनी ज़्यादा रहती हैं क्योंकि आपकी फरमाइशों को देखता हूँ और घड़ी की तरफ देखता हूँ तो किसकी फरमाइश पूरी करूँ, जहन में बड़े सवाल उठते हैं। ये जो गीत की फरमाइश आप तक भेजी थी, दीपा पालकर मैडम की थी, इस गीत की फरमाइश उन्होंने हम तक भेजी थी, उनकी तरह आप भी अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं या फिर हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए नंबर्स में एक बार फिर दोहरा देता हूं, 4515413232 या फिर 4515413333 पर आप कॉल कर सकते हैं और जो मुंबई के बाहर से कॉल लगा रहे वो 022 लगाना ना भूले, या फिर हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, 8657661071 पर आप अपने संदेश और अपनी फरमाइश भी पहुंचा सकते हैं। शंकर जयकिशन की जोड़ी में से जयकिशन साहब की बातें आपसे मैं कर रहा था, उम्मीद है उनकी कुछ बातें, उनके जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपको जरूर अच्छी लग रही होगी। शंकर जी उनकी जोड़ी में से, शंकर जयकिशन की जोड़ी में से शंकर जी, उन्होंने उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से करवाई थी और उस वक्त जो है वो पृथ्वीराज कपूर की ये मुलाकात आगे बढ़कर जो है इन दोनों का काम राज कपूर साहब के साथ भी बना रहा, इनका साथ जो है वो चलता रहा। राज कपूर उस वक्त अपनी पहली फिल्म जो है वो आग के गीतों के लिए संगीत निर्देशक की तलाश में थे और उस जोड़ी ने, शंकर जयकिशन की जोड़ी ने उनकी फिल्म, पहली फिल्म राज कपूर साहब की पहली फिल्म आग के लिए बरसात गीत जो है वो कंपोज किया, बरसात गीत को संगीतबद्ध किया और यही जो है उनकी जोड़ी का पदार्पण था संगीत जगत में। उनकी इस तिकड़ी, राज कपूर शंकर जयकिशन इनकी तिकड़ी का सिलसिला आगे भी चलता रहा। उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की है और कई हिट फिल्में उनके नाम है, उस फिल्मों का भी जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल आपकी फरमाइशों को आगे बढ़ाऊंगा। विजेंद्र घाटोल उनकी फरमाइश है, साथ ही साथ गोस्वामी इनके परिवार से जो है वो बड़े सारे उनके परिवार के सदस्यों ने अपने नाम के साथ अपनी फरमाइश का जिक्र किया है। गोस्वामी परिवार में लालगिरी गोस्वामी है, हेमलता जी है, हीना है, हर्षित है, खुशी है और भी कई सारे सदस्यों के नाम उन्होंने हम तक भेजे हैं और साथ ही साथ और भी कई लोगों ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी। चलिए पहले फरमाइशों की

तरफ बढ़ते हैं, फिर आकर आपसे बातों का सिलसिला और गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। एफएम रेनबो पर आरजे शैलेंद्र दिल से दिल तक, और ये गीत पल पल दिल के पास।

एक बजकर 30 मिनट से 1:40 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार और उसके बाद फिर से हिट हॉट में मैं आपसे जुड़ूंगा। सुनते रहिए 107.1 MHz FM रेनबो।

सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत फिरोज भाई की फरमाइश और 1:53 का समय, मेरा यहाँ से जाने का भी समय हो चुका है। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, शायद और दो फरमाइशें आप सभी के लिए प्ले करूँ। जब भी जाता हूँ आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और आप बहुत बहुत खुश रहे। अच्छा देखिए, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताए जिनको, जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। मैं आरजे शैलेंद्र आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आने वाला गणेश पर्व, गणेश फेस्टिवल जो है वो आप सभी के लिए शुभ हो, आपके सारे काम बने और सारी खुशियाँ जो है वो आपको मिले। Keep listening, keep loving FM Rainbow and love me too. Bye bye, take care of yourself. Love you all, dil se dil tak.

0: समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे।
0: जी,
1: शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण

0: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे

0: के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शिव कुमार सिंह, लेकर पेश हूं कार्यक्रम लव यू जिंदगी। हमारे चैनल के दोस्तों, खास बात ये है ना, जैसे कि मैं, मेरा तो क्या कलाम भी वही है कि मोर बजाना लेस पकाना सुनाते गाने पे गाना। पहले सबसे पहला गीत मैंने ऐसे कार्यक्रम से आगाज किया है, टैक्सी नंबर 9211, जॉन इब्राहिम नाना पाटेकर थे स्क्रीन पर, और 3 मिनट के इस गाने में बपिदा की आवाज़ ने बहुत कुछ मुंबई शहर के बारे में कह दिया। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी थिंग्स, हम क्यों इस शहर से इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते हैं। और इस अगले चंद दिन तो 10-2 हफ्ते तो मुंबई का रंग रूप ही पूरा अलग होगा, भक्तिमय वातावरण होगा। लेकिन और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे इस चीज़ को लेते हुए, और थोड़ा मुंबई बेस्ड जो भी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले टैक्सी नंबर 9211, उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और उसके बाद फिलहाल मैं आपको सुनाऊंगा सुनिधि चौहान की आवाज़ में बबली बदमाश।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पांच बजकर 15 मिनट 44 सेकंड हो चुके हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव के साथ आप बने हुए हैं. कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी और खास तौर से मुंबई वासियों को बता दूं कि जब त्यौहार का मौसम आन पड़ा है और साथ ही साथ आज जिनके भी सैटरडे ऑफ हैं वो घर पे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब बहुत से लोग निकलते कि यार एक ही बात की कंप्लेन करते हैं 20 मिनट का रास्ता था 1.5 घंटा लग गया, तो अभी मान के चलिए त्यौहार का मौसम है तो चंद मार्केट जहाँ पर गणपति जी से संबंधित जो भी पूजा सामग्री होगी जो भी डेकोरेशन में काम आने वाला वहाँ भीड़ होनी होनी है. बहुत से लोग जो मूर्ति खरीदना चाहेंगे जिन जिन इलाकों में उसका निर्माण होता है वहाँ भीड़ होनी ही होनी है. सब कुछ जानकर भी अगर आप प्लान नहीं करते हैं और फिक्र करेंगे और 3 घंटे लग गए परेल से दादर आने में शिवजी आने में, तो ये बोलने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है. इसीलिए और जब आप GPS का सहारा लेते भी हैं और जब GPS आपको दिखा देता है कि आप यहाँ पहुँचने वाले +12 +15 मिनट्स +17 मिनट्स, वो भी आपको उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको नहीं पता कि वहाँ जाने के बाद राइट टर्न सिग्नल का लेने में कितना समय लगने वाला है. तो सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप अनजान बनते हैं, जैसे दीपावली के पहले भी लोग शॉपिंग को निकलते हैं, बहुत से लोग जो अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं लेकिन इन त्यौहार के मौके पर गाड़ियाँ वो भी निकालते हैं क्योंकि सामान रखना होता है, तो अचानक में गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है.

और एक ही दिशा में बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अपने कहते ना कि अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए और क्या चीज़ किस टाइम पे करनी है, कौन से नॉन वर्किंग आवर्स में, वर्किंग आवर्स में, नॉन बिजी आवर्स में करना है, सब प्लान करेंगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और कहाँ आपको मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करना, कहाँ चार पहिया नहीं ले जाना है। जो लोग अभी ट्रैवल वैसे नहीं करते, लेकिन आप क्रिप करने से अच्छा है जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारा समय, पैसा, बहुत कुछ बच गया है, वो भी करके दिखेगा। अगला गीत मीका और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, आला रे आला।

आपने भी सोचा कि शंकर महादेवन जी की आवाज में आपने फिल्म का जो गीत सुनाया वो अक्सर लोग सुनाते हैं विसर्जन के दौरान। मैं थोड़ा सा उल्टा काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि भाई विसर्जन के दौरान जब आप लोग बहुत ही नम्र आंखों से और एकदम भीनी भीनी एक पेंसिव मूड में हो जाते हैं और आप बप्पा को बहुत भारी दिल से विदाई देते हैं, अगले साल आने की फिर से कामना करते हैं और ये साल आ चुका है तो वो समय भी आएगा, रियलाइज़ करते हुए बप्पा का स्वागत उसी तन मन से कीजिए। और आपको बप्पा बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, साथ ही साथ ये भी सिखा के जाते हैं कि जब कोई जुदा होता है तो उसकी विदाई भी कैसे करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी जगा के जाते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा। तो जिंदगी के दोनों रंग खट्टे मीठे साथ में चलते रहने चाहिए, तब आप रियलाइज़ करेंगे। बाकी देवाश्री गणेशा फिल्म अग्निपथ का गीत भी मैं आपको सुनाऊंगा कुछ समय के बाद, लेकिन कुछ समय के लिए मैं फिर से एक मुंबई अंदाज में आपको एक और गीत सुनाना चाहता हूं और वो है आशा भोसले, सुदेश भोसले और सपना अवस्थी की आवाज में। फिल्म आई थी कंपनी और कंपनी में उस समय

5:37:33 हो चुके हैं दोस्तों। बप्पा की चकाचांद मुंबई शहर में हर जगह है, और एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा घर कर लिया है कि जब लोग गणपति जी अपने घर पे लाते थे और लाने के साथ साथ दोस्तों जो हर एक परिवार में होता है। अभी क्या हो गया कि सारा जो डिस्कशन हो गया, सारे का सारा जो दारोमदार जितने भी सार्वजनिक मंडल है वो कितना बड़ा शो कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मूर्ति, बड़े से बड़ा डेकोरेशन, बड़े से बड़ा तामझाम के साथ आप कितना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और पहले बहुत ज़्यादा ये भी ध्यान होता था कि हमेशा कोई ना कोई थीम पर तो बनती थी, और आज भी बहुत सारी जगह थीम पर गणपति बप्पा के बहुत सारे सार्वजनिक मंडल कोई ना कोई मैसेज देते हैं, उस तरह से डेकोरेशन करते हैं, बहुत से लोग किसी न किसी तरह की झांकी भी रखते हैं। लेकिन जो घर में आज भी खासतौर से एक डेढ़ दिन की जो गणपति आती है और एक दूसरे को इन्वाइट लोग भेज देते हैं कि सबको पहुंचना है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों को कि भाई डेढ़ दिन की गणपतियाँ बुलाइए ज़रूर, लेकिन आने की शर्त 100% मत रखिए, क्योंकि टेक्निकली ज्योग्राफिकली मुंबई शहर में लोगों को एक दिन में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं, और भी आज के ट्रैफिक जैम में। तो जहाँ 5 दिन का है, जहाँ 7 दिन के गणेश जी हैं, वहाँ लोगों को बहुत स्कोप लगता है, रिलीफ मिलती, ठीक है वहाँ तो हम पहुँचने वाले हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अच्छी बात है, हर इंसान के मन में भावना है कि मेरे घर पर बप्पा आने चाहिए। अक्सर चाहे अगर मान लीजिए हम 10 लोगों का फ्रेंड सर्कल हैं, तो पहले किसी घर पे जो बप्पा आते थे सबको पता है कि इनके घर पे आने वाला है, और हम सभी लोग प्लान कर लेते हैं कि उनके घर पे जाना है, पहुंचना है, सब एक दूसरे से बात कर लेते हैं किस दिन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, साथ में सब मिलेंगे। अभी प्रॉब्लम ये भी आ गई कि उसमें से अधिकतर लोगों ने अपने घर पे बप्पा को रखा है, हर इंसान अपने घर में एंगेज्ड हो चुका है, क्योंकि उसको उस प्रोटोकॉल बप्पा के हिसाब से पालन करना है, उसे घर पे रखना है, जब गेस्ट आएंगे कोई भी आएंगे तो उसके स्वागत के लिए उनको रहना है वहाँ पर प्रसाद देने के लिए। लेकिन जब वो होता है कि जब हर किसी ने बुलाया तो साथ कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, जो साथ में कहीं किसी घर पे विजिट करना है, जाना है, एक ग्रुप बना बना के हम आरती में भी शामिल होते थे और सबसे कहते थे कि यार गैप रखना था कि हम इसकी आरती भी अटेंड कर लें, इसकी भी आरती अटेंड कर लें, सब कुछ कर लें। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें मिस होती जा रही हैं, और कोई किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप मिस करने लगते हैं धीरे धीरे, लगता है कि नहीं यार ये भी होना चाहिए। तो बहुत से लोगों से निवेदन ये भी करता हूँ कि भाई आप लोगों के मन में ख्यालात भी हैं कि आनी चाहिए, लेकिन अगर हर इंसान भी अपने घर पे मूर्ति रख रहा है तो दूसरे के यहाँ जाके अटेंड कैसे करेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी एक प्रश्न उठता है। इसीलिए उस भक्ति भावना को मेंटेन करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कहते ना कि पूजा में शामिल हो सकें, बप्पा की आरती और भजन करने का एक अलग अंदाज़ है, अलग अलग अंदाज से लोग उसे गाते हैं, बहुत से लोग जो इंस्ट्रूमेंट के सहारे बजा सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं उसमें हैं। तो हर इंसान अपना अपना काम बांट के लेता है, कोई अर्थी अच्छी आरती बोलता है, कोई अच्छा बजा लेता है, कोई प्रसाद वितरण में अच्छा होता है, कोई डेकोरेशन अच्छा कर लेता है। तो जो टीम वर्क होता था ना किसी के यहाँ बनाने का, वो टीम वर्क कहीं ना कहीं कमज़ा होता जा रहा है। मैं चाहूँगा इस पर भी आप लोग ज़रा गौर कीजिए और उसी टीम वर्क को मेंटेन करना है, क्योंकि वो इंसान अपने सारे काम का छोड़कर उस दिन अपने आप को झोंकता है कि मुझे बप्पा के लिए ये सब कुछ दिल से करना है, और जो करना चाहते हो उसे आजकल मौका नहीं मिल रहा है। बस ये भी एक बात है। फिलहाल मैं आपको बात बप्पा की तो चलो बप्पा का ही गीत पहले सुनाता हूँ, उसके बाद मैं मुंबई अंदाज

5:53 18 सेकंड हो चुके हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ लव यू जिंदगी के जाते आते दोस्तों मैं एक और गीत सुना के जाऊंगा 6 बजे समाचार उसके बाद दोबारा हम हाजिर हो के लेकर कार्यक्रम अंदाजे बयां मगर चूंकि त्यौहार का मौसम है तो अंदाजे बयां कुछ अलग होगा उस तरह की गजलें नहीं होंगी आज लेकिन मौसम के अनुरूप हम प्ले करेंगे लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं बहुत से लोगों को गाइड भी करूंगा और हमारे अलग अलग आरजेस गाइड करेंगे अगले पूरे हफ्ते कि जब आप बहुत सारे मंडलों के दर्शन के लिए निकलते हैं तो सब परिवार निकलते हैं जहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं तो कहाँ आपको ज़्यादा जाना चाहिए कहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए मसलन कि कहाँ अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे चौड़ी एंट्री वाले बहुत सारे मंडल होते हैं जहाँ पे आपको बप्पा नज़र आते हैं और धीरे धीरे सभी लोग उस तरफ जा सकते हैं और अच्छे से दर्शन पा सकते हैं भगदड़ भी नहीं होती है आपको उन मंडलों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ लगते हैं कि चौड़े से सीधे एंट्री पतली हो जाती है और वहाँ एक कहते ना कि बॉटलनेक बन जाता है जिससे लाइन बड़ी लंबी हो जाती है और बहुत सारे मंडलों को ये भी होता है कि भाई जितनी लंबी लाइन उतना हमारा प्रचार होगा लेकिन वो किस कीमत पर होता है वो भी जानना चाहिए तो इसके लिए आपको हमेशा से वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपको लगता है सेफ्टी है खासतौर से अगर आप बच्चों के साथ हैं बुज़ुर्गों के साथ हैं तो कहाँ कितनी देर खड़ी होके आपके दर्शन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मंडलों में साथ ही दर्शन कीजिए प्रसाद के रूप में भोजन भी होता है उसका भी लाभ उठा सकते हैं और जहाँ पे आपको लगता है भक्ति भाव से आप कुछ देर समय व्यतीत करना चाहते हैं बिठाना चाहते हैं बाबा को दूर से देखना चाहते हैं अच्छे से उनको नज़रों में अपने पूरे समाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे मंडल हैं और जहाँ पे आप शांति से इनके दर्शन कर सकते हैं तो देखा देखी पे मत जाइए आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे कितना राजा हर इलाके का है पूरे मुंबई में है हर जगह है और बापा के आशीर्वाद हर जगह सबके ऊपर उतने ही होते हैं। कार्यक्रम के अंत में जाते आते मैं आपको सुनवा के जाता हूं सुखविंदर सिंह विशाल ददलानी रॉबर्ट बॉबम लो की आवाज में फिल्म का नाम कमीने का गीत ढैन ढैन

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, शेव बजकर 15 मिनट और 41 सेकंड हो चुके हैं। प्रोग्राम का ये हिस्सा आज अंदाजे में कुछ अलग होगा। तेज तरार म्यूजिक होगी, शहर की बातचीत होगी और साथ ही साथ कुछ बातें करेंगे उस पर, क्योंकि आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है और ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में मना रहे हैं, इसकी खास बात क्या होगी, इसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। और एक जो इसकी टैग लाइन है, ऑन द मूव बट नॉट अलोन, स्पेशली क्या होता है कि माइग्रेशन से संबंधित जो लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स और बहुत सारी दुश्वारियाँ सहकर यहाँ से वहाँ जाते हैं, उस दौरान उनके साथ बहुत कुछ होने, एक रिस्क जोन में रहते हैं, बहुत कुछ होने का खतरा बना रहता है, तो उस दौरान कैसे उनके खतरे को कम से कम किया जा सके फर्स्ट एड के जरिए, इसके बारे में जागरूकता आज के दिन हम खास तौर से फैलाते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अदनान सामी, शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में दन दनाते गाने के साथ, फिल्म का नाम आवारा पागल दीवाना।

इसके बाद उस एल्बम से गाना प्ले करता हूँ जो साल भर से सबके जुबान पर है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप समझ चुके होंगे फिल्म का नाम है धुरंधर। खान साहब की आवाज में साथ दिया है शाश्वत सचदेव ने, जान से गुजरते हैं। लेकिन एक और बात मैं बता दूं मुंबई वासियों को, बहुत से लोगों ने भारत में एक आदत डेवलप कर ली। आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा हम उसके आदि हो चुके हैं ना, टकाटक अचानक में जब भी कुछ आपके सामने एल्गोरिथम में आ जाता है, अपने कोई चीज सर्च कर रही है, ढूंढ रहे हैं और वो सामने आ गई, आपने टक से ये कर दिया और कर दिया, डिलीवरी मंगा ली। कभी कभी 100, 200, 500, 1000, 2000, जब तक आप कोई महंगी डिलीवरी ना मंगा रहे हो, रूटीन में दो पांच डिलीवरी मंगा लेते हैं, कौन सी आई कौन सी नहीं आई याद भी नहीं रहता है, फिर अचानक में उसमें चले जाते हैं, उसी में कब किसी को दोबारा वापस करते हैं, लेते हैं, लगता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ इतनी बैठ चुकी है कि बैठ के अगर उंगलियों पे आपने कुछ डिलीवर नहीं किया और ऑर्डर नहीं किया तो लगता है आज कुछ खाली खाली सा दिन गया। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है?

6:37 हो चुके दोस्तों। वैसे जनरेशन में एक दिक्कत यही हो चुकी है, योलो, यानी यू लिव ओनली वंस, और पैसे बचाने।

कि भविष्य हमारा और भी अच्छा जाए, तो क्या करे और क्या ना करे। इसी उधेड़ बुन में वीकडेज और वीकेंड चले जाते हैं। जैसे कि मैंने एक महीने पहले कहा था कॉरपोरेट जगत के बारे में कि किस तरह से ये सैटरडे का छलावा जो है आपको देते हैं कि आप अपनी ताकत को फिर से एनर्जी को गेन कीजिए, क्योंकि 5 दिन जो जूस निकाल लिया है आप में शक्ति बचती नहीं कि क्या करें सैटरडे को। और 8-9 घंटे की जो रियायत मिलती है आपको सैटरडे की, जो हर दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा कर करके 5 दिन में 15-16 घंटे ले लेते हैं, तो 15-16 घंटे लेके सैटरडे नाम का एक झुंझुना तो थमा देते हैं। और इसी बहाने दोस्तों जिंदगी चलती है, क्या करें। मुंबई शहर जो है सबसे आगे है भारतवर्ष में, कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। तो इरफान साहब ने जो एक डायलॉग मारा था लाइफ इन मेट्रो फर्स्ट में, ये शहर जितना ज़्यादा देता है उससे कहीं ज़्यादा ले लेता है। आपको तय करना है आपकी लिमिट क्या है और अपने आप को कितना झोंकना है और कितना अपने आप को संभालना है। चलिए इसी बात पे गाना थोड़ा सुकून देने वाला गाता हूँ, एक अलग अंदाज का सुकून, अंकित तिवारी की आवाज़, फिल्म का नाम रॉय।

जब ऐसे गाने चलते हैं ना, तो बाहर कितना भी शोर हो, सड़कों पे ट्रैफिक जाम हो, ट्रेन के धक्कों मुक्कों के बीच में आप जैसे तैसे ईयरफोन लगा कर बस गाने सुन रहे होते हैं कि कैसे पहुंच जाओ अपने स्टेशन के पास, तो मुझे लगता है शाम के दौरान जब बहुत मुश्किलात में आप लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मुंबई शहर की बहुत बड़ी की चीज़ है कि लोग घंटों दो घंटों ट्रैवल करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ आते आते दिन के 3-4 घंटे मेहनत के साथ रहते हैं, और मुझे लगता है कि अगर उन लोगों को अगर मैं 5-10 मिनट भी सुकून के पल दे सकूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब लोग SMS करते हैं कि किस किस हाल में हम लोग इस गाने को सुन रहे हैं, और उनको लगता है कि यार बहुत कुछ दुश्वारियां हैं लेकिन यही रिलीफ जब मिल जाता है, और बाकी चैनलों के मुकाबले जब आप लगातार गाने सुनाते हैं और बकबक कम होती है तो ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ऐसे गानों की कहते हैं ना कि झड़ी लग गई है तो क्यों रुकें। इसके बाद मैं आपको एक और गीत सुनाता हूँ शफ़ाक़त अली की आवाज़ में, राज रिबूट, राज 3 का एक गाना है ज़िंदगी से, सुनिएगा इस गाने को, बहुत खूबसूरत सा नगमा है ये।

इसके बाद जो अगला गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा इस सेगमेंट का, और ये गीत मुझे ऐसा लगता है मुंबई करो के दिल के लिए बारे में पूछता है। आवाज़ अलीशा चिनॉय की, फिल्म का नाम करम, गीत के बोले तिनका तिनका।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: साथ दुष्कर 12 मिनट और 31 सेकंड हो चुके हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप लोगों का पसंदीदा समय हम तुम गाने का, जहां आप अपनी फरमाइशें हमारे पास दर्ज कराते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। सबसे पहली फरमाइश आ चुकी है मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में, फिल्म आवारापन का ओरिजिनल आवारापन का गीत तेरा मेरा रिश्ता। ये फरमाइश आई है गुलबर्ग से, अंकित ने की है, वो सुनना चाहते ये गाना।

गाने, चार गाने गाए, एक जबरदस्त कमाल के हिट, फिर आप लगता है यार ये कहाँ चले गए। वैसी एक आवाज के बाद आने वाली आवाज है कामरान अहमद की, फिल्म का नाम है जुदाई। इस गाने की फरमाइश आई है गुजरात से, गुजरात में वडोदरा से सलीम ने, और सलीम सुनना चाहते हैं जुदाई का ये टाइटल ट्रैक। आवाज है कामरान अहमद की, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, लेकिन फिर वही बात। 8657661071

अगली फरमाइश आई है तेलंगाना से, शंकराचार्य जी की, तेलंगाना में खम्मम सिटी से उन्होंने ये मैसेज किया है और उनके लिए हम प्ले कर रहे हैं केके की आवाज में। फिल्म का नाम है गैंगस्टर, तू ही मेरी शब है। शंकराचार्य जी, आपके लिए गाना जा रहा है। और फिलहाल दोस्तों 8657661071 इस नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है।

सात बजकर 32 मिनट और 34 सेकंड हो चुके हैं। अगली फरमाइश है सुमित प्रकाश मोदाली जी की और ये सुनना चाहते हैं फिल्म रुस्तम का गीत तेरे संग यारा। सुमित जी ये फरमाइश, और सुमित जी बड़ा लंबा सा मैसेज डालते हैं कि जरा सा दिल में दे जगह तो ये भी चलेगा। मैं इतने दिनों से फरमाइश भेज रहा हूँ लेकिन भी पूरी नहीं, शायद आज भी इतना पूरी नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, बस आपकी बात खैर कोई बात नहीं लग गई और आपकी फरमाइश सबसे पहले आ गई।

7:38 हो चुके हैं। अगली फरमाइश आई है मुंबई के एक पॉश एरिया से, उसके कहते हैं पेडर रोड, और पेडर रोड से श्वेत लाना सुनना चाहती है श्रेया घोषाल की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गीत हंसी। श्वेतलाना, ये गाना आपकी रिक्वेस्ट पर हम प्ले कर रहे हैं और श्रेया घोषाल ने बहुत ही अच्छा गाया। इस गाने के दो वर्जन हैं, ये फीमेल वर्जन हम आपको सुनवाई दे रहे हैं। 7:38 और 24 सेकेंड, दो चार गानों का स्कोप और बचा है। 8657661071।

सादृश कर 42 मिनट और 53 सेकंड हो चुके हैं। अगली फरमाइश आई है उड़ीसा कटक से और श्रीनाथ जी सुनना चाहते गीत दुआ, फिल्म का नाम है शंघाई। श्रीनाथ जी कटक ये गाना आपके लिए पहुंच रहा है। नंदनी श्रीकर, अरिजीत सिंह और शेखर विजयानी की आवाज़ से बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, आपने सुना है।

कुछ समय पहले तो उसने एक फिल्म आई थी फिर मिलेंगे, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान का भी कैमियो था उसके अंदर। उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गीत था जो आपको एक पॉजिटिविटी की ओर और बहुत सारी उम्मीदें जगाता था, जीने के इशारे मिल गए शंकर महादेवन की आवाज़ में। मैं चाहूँगा इस गीत को ध्यान से सुनिएगा, इसकी फरमाइश की थी अरविंद कुलकर्णी जी ने इचलकरण जी से, वो गाना है। और उस गीत के बाद अगली जो फरमाइश आने वाली है, के की आवाज़ में दो गीत है, तेरी तमन्ना और क्या मुझे प्यार है, दोनों इमरान हाशमी स्टारर की फरमाइशें हैं लेकिन अलग अलग अंदाज से आई है। जो पहली फरमाइश आई है वो आई है आंध्र प्रदेश से सुखदीप की, और जो दूसरी फरमाइश आई है तेरी तमन्ना वो आई है हिमाचल से अरविंद की। अब किसकी फरमाइश प्ले होती वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि शंकर महादेवन की आवाज़ में जो गीत है वो गीत की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। कोशिश करूँगा तीनों गाने प्ले कर सकूँ 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

7:55 हो चुके हैं। आज की आखिरी पेशकश हिमाचल से ले, आजकल नाम में कितना भूलने लग गया हूँ। और अरविंद हिमाचल से सुनना चाहते हैं गाना, और जो है तेरी तमन्ना के और जुबिन की आवाज में। इसी के साथ अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाजत, मेरी आपसे बहुत जल्दी होगी। गणेश उत्सव का त्यौहार धूमधाम जोश खरोश से मनाइएगा, हर्षोल्लास से मनाइएगा। इसके बाद 8 बजे ठीक होंगे फली आपके साथ लेकर पेश होंगे कार्यक्रम रॉक विद जॉक, और ये कार्यक्रम चलेगा रात के ठीक 11 बजे तक। हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ आपकी सेवा कीजिए, और सुनते रहिए FM Rainbow 107.1।

0: PM. Keep listening in to this station.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
2: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस,

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के

0: मंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन

नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात उतनी भर नहीं होती जितनी जुबान से कही जाती है। कुछ बातें तो निगाहें भी कहती हैं, जो सीधे दिल में उतरती हैं। झूठ की गुंजाइश नहीं है,

0: छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर आते हैं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।

0: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
1: ठीक है,
0: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। उसकी आंखों ने खुदा जाने क्या जादू किया कि तबीयत मेरी माइल, कभी ऐसी तो न थी।

जाकर भी कहा जाता है कोई पाकर मन का एकांत कोना यादों में लौट आता है। वक्त कहीं किसी मोड़ पर ठहर जाता है किसी का नाम लेकर, पर एक तड़प एक एहसास छोड़ जाता है।

अशआर मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। दिल्ली एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और देश के बाकी हिस्सों में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं नविदा हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

12 बजे हैं। आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति पी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोजन के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाले रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में 5,89,000 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान पाकिस्तान स्थित संचालकों और सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाया गया। मौसम विभाग ने गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल्स में देर रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबलेंका का सामना एलेना रिपकिना से होगा। और महिला एशिया कप क्रिकेट में खिताबी मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:03 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म नाखुदा से, और आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं महल फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं जीरो आर शो और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म का नाम है नैना और इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

लैला फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं आमने सामने फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं जीरो आर शो आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

किस्मत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है बाहरें फिर भी आएंगी।

और दोस्तों जीरो आर शो के आखिर में आपको सुनाते हैं मुकेश का गाया रजनीगंधा फिल्म का गीत, और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

एक बजे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया, बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया, कहा मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो BKC स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में आयोजित JEPC पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। देश में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा लगातार 3रे वर्ष पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में 5,89,000 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। NIA ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान पाकिस्तान स्थित संचालकों और सीमा पार आतंकी योजनाओं के मामले में चलाया गया। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अब से थोड़ी देर में पिछले विजेता आरना सबालेंका का सामना एरिना रिबाकिंग से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

1:02 और 50 सेकेंड हुए हैं। दोस्तों अब आप सुनेंगे प्रोग्राम सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और ये प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो एफएम चैनल है। आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों

विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीके से स्थित भारत डायमंड बोर्ड से आयोजित जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लाल बागचा राजा के दर्शन करेंगे। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: 2:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक। प्रोग्राम का नाम है भुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

0: ब्लू वाटर बीच तक।
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए गणमान्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का भ्रमण किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बीकेसी स्थित भारत डायमंड बोर्स में आयोजित

जीजेईपीसी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और लालबागचा राजा के दर्शन करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान। अमेरिकी ओपन टेनिस में अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील्स कूप्सकी ने पुरुष युगल का खिताब जीत लिया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस साझा भावनाओं का ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे तक शुरू हो जाएंगी। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा अब तक 13,700 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। वियतनाम के फान थिएट में आयोजित स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में भारत के एसडी प्रज्वल देव ने फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कॉजमिन के साथ मिलकर अपना दूसरा एटीपी टेनिस चैलेंजर युगल खिताब जीत लिया है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। बहुपक्षवाद मजबूत बनाने और व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम